0: ወራራሩ ንብ ተለምራሩ ዲደማኛ ማሂጎ ሀቀማሙ ይሂበና ሞለላን ወዊዮ ሀረረዋ አዝናር ማጅነው ይጉዘራ መግኝ ይበራሩ ወኖ ንወናቀ ወዊያ ወሂም ለባና አና ማና ሙሩላኙ ምኖ ዊካፓጃን ታካ ካሂሮ ሚባ ምበናይ ይበርዳሪ ማሂሮ ኛኛይ ओ मका जमी होता हुई न्याय बारो मुहिनी खुबाने हिमा को हैरन रे
1: इट्स पियो बार्स इन टू द सेम
0: आऊ ओ को हैरेगे